सुखी एक एक की पीर पशान है घट घट के पट पट की जान है जब उद करख करा करतारा प्रजा धरतव देह अपारा जब आ करख करत हो कबहू तुम मैं मृत दे तर सब हूं जेते

केवद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कई भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्पुज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो शंकर एकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सुजंपव अवरच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेते उठ बत उत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक वार ते आए है ताके काल निकट ने आए है रच्छा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट ट्राय तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताप तनक में हर हो।

हरि हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविक शक्ल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न दिसै व्यापत कोई अड़िल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौन

घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी।

0: है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सही कहते हैं।
1: East FM
2: celebrating your favorite occasion. East FM,
1: Kenya's premier
2: Asian mix.
1: Asian mix.

गुलबहार बानो को सुनने के बाद बारी आती है मोहम्मद जुमा की। ऐसा क्या लिखूं कि तेरे दिल को तसल्ली हो जाए, ऐसा क्या लिखूं कि तेरे दिल को तसल्ली हो जाए। क्या ये बताना काफी नहीं कि मेरी जिंदगी हो तुम। एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन सुन लीजिए जो कुछ है दिल में हमारे। अब सुनिए मोहम्मद जुमा को।

तू इस कदर मुझे अपने करीब लगता है, तू इस कदर मुझे अपने करीब लगता है, तुझे अलग से जो सोचूं अजीब लगता है। जैसे ना हुस्न से मतलब ना इश्क से सरोकार, वो शख्स मुझको बहुत बदनसीब लगता है। आइए अब सुनते हैं मुन्नी बेगम को।

अपना सा शौक और लाए कहाँ से हम, अपना सा शौक औरों में लाए कहाँ से हम, घबरा गए हैं बेदिली हम रेहां से हम। मालूम सब है पूछते फिर भी हो मुद्दा, मालूम सब है फिर भी पूछते फिर भी हो मुद्दा, अब तुमसे दिल की बात कहें क्या जुबान से हम। मैं ख्याल हूँ रईस खान की आवाज़ में, सुनिए।

पलकों की ओट में वो छुपा ले गया मुझे, पलकों की ओट में वो छुपा ले गया मुझे, यानी नजर नजर से बचा ले गया मुझे। मैं भी छलक छलक के रहा उसके होंट तक, मैं भी छलक छलक के रहा उसके होंट तक, मानिंदे जाम वो भी उछा ले गया मुझे। अब सुनिए इस हिस्से के आखिर में गुलाम अली को।

गुलाम अली को सुनने के बाद एक गजल उस पे लिखूं, दिल का तकाजा है बहुत। एक गजल उस पे लिखूं, दिल का तकाजा है बहुत। इन दिनों खुद से बिछड़ जाने का धड़का है बहुत। रात हो दिन हो, गफलत हो कि बेदारी हो, उसको देखा तो नहीं है, उसे सोचा है बहुत। ईस्ट FM पर आप सुन रहे हैं अलाउद्दीन कुरैशी को अंजुमन में। दिन का 1:05 हुए हैं। अब आध घंटे के लिए सुने इशारा, गजल्स रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ की आवाजों में। मुलाहिजा हो।

ये प्यार के रिश्ते भी कुछ अजीब होते हैं, होते हैं वो दूर दिल से जो करीब होते हैं। ये इश्क नहीं आसां असद, बस एक आग का दरिया है। पार लगते हैं वही जो खुश नसीब होते हैं।

तुमने बाल अपने जो फूलों में बसा रखे हैं, शौक को और भी दीवाना बना रखा है। कहते हैं अहले जहां दर्द मोहब्बत जिसको, नाम उसी का दिले मुस्तर ने दवा रखा है।

आज फिर तेरी याद ने रुला दिया हमको, आज फिर तेरी याद ने रुला दिया हमको। हमने तो इरादा किया था तुझे भूल जाएंगे, टपक पड़ते हैं आंसू जब तुम्हारी याद आती है, टपक पड़ते हैं आंसू जब तुम्हारी याद आती है। ये वो बरसात है जिसका कोई मौसम नहीं होता। ईस्ट एफएम पर आप सुन रहे हैं अंजुमन अलाउद्दीन कुरैशी संग। अब 2 बजे तक सुनिए सलमा की याद में दीदार सिंह परदेसी की आवाज, सलमा की याद।

सोनल मोदा ने लिखा है कि गजलियात बहुत सुंदर हैं। शुक्रिया सोनल मोदा।

अब तो ले दे के वही शख्स बचा है मुझ में, मुझको मुझसे जुदा करके जो छुपा है मुझ में। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में, और फिर मानना पड़ता है खुदा है मुझ में।

ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।